केवेनष्टेयात न एङता सोवाने आ याय आ याय आ ए मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया मंग मंग कतरित अमम नामे पोषे ननवा ओया शेका